ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा, जैसे गाय का बाछा छूटला खन चोकता माँ।

0: लिख लिख धर्म विचारे।
1: बाबा ईश्वर ब्रह्मा देव सोहन सदा सवार।
0: इंद्रासन बैठे देव दया दर नाले।
1: बाबा सिद्ध समाधि अंदर गावे साध विचारे।
0: गोविंद

0: नमस्ते ने पैसे,
1: नमस्ते ने नामे, नमस्ते ने कामे,
0: नमस्ते ने दाते, नमस्ते ने गाते,
1: नमस्ते ने दूते, नमस्ते ने पूते,
0: नमस्ते ने लोके, नमस्ते ने सोके,
1: नमस्ते ने थापे, नमस्ते ने थापे,
0: नमस्ते ने त्रिमाने, नमस्ते ने दाने,
1: नमस्ते ने गाय, नमस्ते ने बाय,
0: नमस्ते ने त्रिभर्गे, नमस्ते ने सड़गे,
1: नमस्ते ने प्रभोगे, नमस्ते ने सुजोगे,
0: नमस्ते ने अड़ंगे, नमस्ते ने अभंगे,
1: नमस्ते ने गम्मे, नमस्ते रम्मे,
0: नमस्ते ने जलासरे, नमस्ते ने निराशरे,
1: नमस्ते ने
0: जन्मे नमस्ते सुबन में
1: नमस्कार गाने नमस्कार पाने
0: नमस्कार रंगे नमस्कार पंगे
1: नमा काल काले नमस्कार दयाले
0: नमस्ते बरने नमस्ते मरने
1: नमस्ते जुरार नमस्ते कृतारण
0: नमो सब तंदे नमो सत बंदे
1: नमस्ते निशाके नमस्ते निबाके
0: नमस्ते रहीमे नमस्ते करीमे
1: नमस्ते नंते नमस्ते हंते
0: नमस्ते अस्त्रागे नमस्ते सुहागे
1: नमो सर शोक नमो सर पोक
0: नमो सर कर्ता नमो सर भर्ता
1: नमो जोग जोगे नमो पोग पोगे
0: नमो सर दयाले नमो सर पाले
1: चाचरी संत प्रसाद रूप है नूप है जू है पू है
0: लेख है पेख है नाम है काम है
1: है जीता पीता
0: त्रिवन है निदान है त्रिवर्ग है सर्ग है
1: नील है नाथ है जे है जाद है
0: जन्म है पर्ण है पूध है पर्ण है
1: गंज है पंच है जूझ है जंज है
0: मीख है रफीक है दंध है बंध है
1: बूझ है सूझ है काल है जाल है
0: ला है जा है नंद है महंत है
1: लीख है निष्टीख है निलंब है।

0: चंदन
1: नमो सर माने समस्ति निदाने
0: नमो देव देवे अपेक्षा पेवे
1: नमो सर काले
0: नमो सर
1: नो सत्याले
0: काले नमो सर पाले
1: नमो सर कोने नो सर पाने
0: नमो नर्तन संगीत माते
1: नमो पान पाने नमो माल माने
0: नमो चंद्र चंद्र नमो पान पाने
1: नमो गीत गीते नमो तान ताने
0: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
1: नमो पान
0: नमो पान पाने
1: नमो बाद बाद दे
0: नमे समस्ति स्वरूपे
1: भगी परमाथे समस्ति विपूते
0: कलंक बनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राज राजेश्वर परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे
1: नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे
0: नमो रत्पाने नमो अष्टर माने
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्ष अपरमी अपोग्य अपक्ते
1: नमो जोग जोगेश्वर परम जोगते
0: नमो नित नारायण क्रूर कर्मे
1: नमो प्रेत प्रेत देवे सुदुर में
0: नमो रोग हरता नमो रोग रूपे
1: नमो शाह नमो पुपे
0: नमो दान दाने नमो मान माने
1: नमो रोग रोगी नमस्तिक स्नाने
0: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र
1: नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सदानंद सबंग प्रणासी
1: अनुपे रूपे समस्त निवासी
0: अजा सदा बुद्धा वृद्ध करता
1: उदो और दर्दंग अगम अखरता
0: परम परम परमेश रंग प्रोच पालंग
1: सदा सरदार सिद्धा ता दयालंग
0: अचे

लोग चौदह के पखे जग जापी जय जाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार कालहीन कलासन जगत काल पुरख देश अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम आप रूप अमीक अनुस्थित एक पुरख अवधूत अंगहीन अपंग अनातंग एक पुरख पार सर्व गंता सर्व भंता सर्व ते अनपेख परम वेद पुराहन जाके नित पखत नित मधुबार छंद तुआ प्रसाद मुनमन प्रणाम गुणगण प्रणाम गुणगण उदार में मापार अनुभव प्रकाश निर्देश।

चादरी छंद पुडंग प्रिया छंद चत चक्कर करता चत चक्कर हरता चत चक्कर वर्ती चत चक्कर पड़ती चत चक्कर पासे चत चक्कर वासे चादरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न चित्र न मित्र पड़े है पवित्र भगवती छंद तो है प्रसाद कथते के आचित देसे के आपिज पेसे के आपिज लोके के आदित सोके के राजन प्रभा है के तरमंग जा है के जतन कर

अभगत है, प्रकट है, नाश है, प्रकाश है, अलेख है, अपेक है, अडा है, अगा है, नित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं कर्वं, सर्वं तर्वं, रसावल छंद त्वा प्रसाद, नमो नरक नाशेष देवन प्रकाशे, प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे, अनंगी अनामित पंगित कामे, न पोत्रे न पोत्रे न सित्रे न मित्रे न निसाकं श्री के अमितो अमीख है, भगवती छंद त्वा प्रसाद, के जहर जूर है, के हाथ जड़ हजूर है, के साहिब दिमाग है, के हुसन चिराग है, के रोजी दहिंद है, के राज रहिंद है, के नीमल खिराज है, गरीब बल निवाज है, कलंकम प्रास है, समस्त निवास है, समस्त जबा है, के साहिब के राह है, के सबल गवन है, हमेशा रवन है, परम परम ईसा, समस्त लदीसा, जमीन अल जमा है, अमीकल इमा है, के अचलन प्रकाश है, के मित्तो सुबास है, के मित्तो पसा है, के आत्म प्रभा है, मधुबार चंद तो है प्रसाद, मन मन प्रणाम, गुणगन बदाम, अनगन प्रणाम, मन मन सलाम, अनुभव अनास, मन मन प्रकाश, अंचित अंग आसन अपंग, जल थल अमन तेस अपंड, अनुभव अनास, तेतर त्रास, ओंकार आद कथनी अनाद, कर कर प्रणाम, चिचर नाम, अंजित कात, आजित न बात, बात कात, अनज बात, अडीत तरम, अडीत करम, हर बोल मना चंद त्वा प्रसाद, करनाले है, अरकाले है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, जग के तन है, जग के कर्ण है, सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, करना करे बसंबर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, जपा जपा है, थप्पा थप्पा है, अमृता अमृता है, करना कृत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अमृता अमृता है, अजबा कृत है, अमृता अमृता है, बसंबर है, करनाले है, पोपंजन है, अर्गंजन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, परमात्म है, सर्व आत्म है, कुजंग प्रयाज छन, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो अंधकार, नमो तेज तेजे, नमो राज संत, ताम संत, सात रूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो जुद जुदे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो कलह करता, नमो सात रूपे, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, अपंगी रूपे, अनंगी अनामे, एक अचरी छंद, अजय अलह अपै अभय, अगंज अपंच, अलख अपख, अनाम अकाम, अगा अडा, न रागे न रंगे, न रूपे न रेखे, कुजंग पुरिया छंद, नमस्तल प्रणाम, समस्तल प्रणासे, निकाम विभूते, समस्तल स्वरूपे, सदा सदानंद, सतंग प्रणासी, अजाय विभूते, गजाय गनीमे, चतुर चक्रवर्ती।

सर्वांगं विभूते एकोंकार सतगुर प्रसाद पाशाय दशमी तप प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध सुहू

0: वीर अपार पते प्रयार अभिचार
1: अभिचार
0: अपार बचैया
1: देश मलिंद समाते के मान लैया
0: देवरांग के तोरण हार तो बात हनी चकचाल लवैया
1: सारे श्री सब को सुनाए दाचक नेक सुए लवैया
0: देवने निसाचर पूत पवित पवान जपेंगे
1: जीत पे जल मैं थल मैं पली पर मैं सत्था करेंगे
0: कौन हार चती
1: कौन
0: मबने भगवान कपेंगे
2: सास मुंह पे सन पे हजक

0: ब्रह्मेश्वर विसंचित अनपसेजम पांच परंगे
1: जेना सिर पर के प्रसाद पर तेना फेना दे तरंगे
0: आप जो दो लूचन मून के बैठ रहे हो भक्तान लगायो
1: नाथ फिरो ले सार समुद्र लोग पर लोग वायो
0: बख्या बख्यान

0: कृपा हनुमान
1: महामूल का स्पे का जानत
0: महादेव को कह सदा से
1: श्रृंगार का जीनत नहीं पे
0: आप अपनी बुध है जेती
1: वर्णत पेन पेन तो है तेती
0: तुमने लिखा न जाए पसारा
1: कह बिल सदा प्रथम संसारा
0: कह रूप अनूप स्वरूपा
1: रंग पे और राव के रूपा
0: अंडा चेहरा से तरकीनी
1: उत पे खान बहुत रच दीनी
0: को फूल रा चाहवा बैठा
1: कहां से उठ पे असंख्य रिख्याठा
0: आद
1: जगात स्वरूप स्यम
0: अभिरक्षा मेरी तुम करो
1: सिख अबार सिख संगरो
0: दोस्त ते अठवा तुक पाता जे स्तुतव सरनी परे
1: दुख दुख छ मरे
0: पुरख चवन पग परे त्यारे
1: के तुम संकर सब तारे
0: जो कल को एक बार जाए है
1: के काल एक नहीं आए है
0: अच्छा होए ता है सब काला
1: दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला
0: कृपा दृष्टन जाए निहार हो
1: ताकि ताप तन कुमार हो
0: दिल सिद्ध कर मौसम हो
1: दुष्ट शाश्वत सके न कोई
0: एक बाजन तुम्हें संभारा
1: काल फांसते ताए अंबारा
0: जिन्ना नाम त्योहारो कहा
1: दारिद्र दुष्ट दोख तेरा
0: खड़े
1: खेत में शरण तिहारी।

सो चुन कर दिया, पिता आपो अपना आपे ही लेखा संडिया, जा रहना नाही ऐत जागता कायत गार बहंडिया, मंदा किसै ना आखिया, पढ़ अखर एहो।

सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सद बल जाई, गुर कृपा ते हर मन वसाई, से तन वंत हर नाम लिव लाए, गुर पूरे हर तन परगासिया, हर कृपा ते वसै मन आए रहाओ, अवगुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर कै सहज सुभाए, पूरे गुर की साची बानी, सुख मन अंतर सहज समानी, एक अचरज जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक नाम पाया पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रभ एको सोए, गुरमति कट पर प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान जान पछाणिया, नानक नाम पिलै मन मानिया, सहज जान प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिलै मन मानिया, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।

सब हुए मीत निर्मल तेरा हुए चित सब ते उत्तम कर्म सकल धर्म श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा हो उधार हार जाप जाप जन्म जन्म कवतरे पार पूर्ण तेरी हो आस जम की कटिए तेरी फास गुरु का उपदेश सुनिज नानक सुख सह सुनिज राम कली महला पंजवा जिस की तिस की कर आस आपन लाज मान जिसका तू तिसका सब कोय तिसे परा सदा सुख होय काहे परम परम बेगाने ना बिना कुछ काम न आवे मेरा मेरा बहुत पछताने रहाव मेरा मेरा कर बहुत पछताने जो जगरे सोई मान ले मन निरल होवे के जिसका पण लागे मीठा गुरु प्रसाद रले मन बूठा गवे प्रवाह गोचरे आप आठ कर मन था को जाप जिस चित आवे बिन सह दुखा हल पल धरा उजल मौका कौन कौन उदरे गुण गाए गण न जाए की न पाए बुढ़ लो सा संग धरे नाम से प्राप्त करे राम कली महला पंजवा मन मैं जाप कुवंत गुरु पूरे इह दिनो मंत मिटे सगल भय त्रास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरु देवा कीमत किछु कह न जाए साचे सजल गवे वरहाव कारण करामणय करण करामण आप तिस उसदम जाप तिस की सेवा कर नीत सच सहज सुख पावे मीत साहब मेरा दुबारा किन में था भूता पनहार तिशुनि अवर न कोई जनकार आखा सोय कर किरबार दास नीजे अपने से को दर्शन दीजे नानक जापी जब जाप आसव ते उचा जाका प्रताप राम कली महला पंजवा बिरथा प्रवासा लोक ठाकुर प्रभु तेरी टेक आवत छूटी सव्यावर छूटी सव्यास चिंत पिटा कुल पिटे गुणता से को नाम तय मन मेरे कार्य तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाय मन मेरे रहा तुम ही कारण कारण करण चरण कमल हर शरण मानदन हर विद्याया आनंद हर उदिगाया तिसी की ओर सदीव जाके किन्ने है जीव सिमरत हस कर निधान राखनार निधान सर्व की रेण होवी जय आ मिटाय मिली जय अंदन जपित आइए नाम सफल नानके काम राम कली महला पंजवा कारण करण करीम सर्वपाल रहीम अलह अलख अपार खुद खुदाए बड़ बेसुमार ओं नमो भगवंत गुसाई काल करावर या सब ठाई रहाव जगना जग जीवन माधो भव पंडित माया राधो रिकी केश गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद मेहरवान मौला तू ही एक पीप कैमर से दिलां का माल करे वहा के पुराण देव ते पाप नारायण नर हर दयाल रमत राम कड़ कड़ दयाल हार बास दे बात साब नाय लीला कुछ लगी न जाए मेहर दया कर करण हार पद गंदक बंदगी दे आधार सृजन हार कहो नानक गुरु होए परम एक अल्लाह पार ब्रह्म राम कली महला पंजवा कोट जन्म के बिन से पाप हर हर जगत बनाई संताप गुरु के चरण कमल वसे महाविकार तंते सवन से गोपाल को जस गाओ प्राणी कथ कथा साची पूर्ण साची प्रपूर्ण ज्योति ज्योत समान रहा तृष्णा भोग सब नासी संत प्रसाद नासी रैन दिन प्रभ सेव कुमानी हर मिलने की है निशानी मिड़ चंजाल होए प्रवे दयाल गुर का दर्शन देख निहाले परापुर बड़ा करमण आय हर के गुणित रस न गाया हर के संत सदन प्रमान संत जना मस्तक निशान दास के गुण रस न गाया दास के गुणित रस न गाया हर के संत सदा प्रवान संत जना मस्तक निशान दास की ऋण होए है जे कोय नानक तिसकी परम गत होए राम कली महला पंजवा दर्शन को जाइए कुर्बान चरण कम हृदय तर ध्यान धूर चंद्र की मस्तक लाए जन्म जन्म की जन्मत मल जाए जिस भेट मिटे अभिमान पार मन सवन दरी आवे कर कृपा पूर्ण भगवान रहाव गुर की कीरत जपिए हरनाव गुर के भगत सदा गुण गाओ गुर की सूरत निट कर जान गुर का शब्द सत करमान गुर के गुर बचनी समसन सुख दुख कदन व्यापे तिशना भूख मन संतोख शब्द गुर राज जप गोंद प्रण दे

तिस ठाकर को राख लिहु चीता। जिन दिया तुद पवन अमोला, जिन दिया तुद नीर निर्मोला, जिन दिया तुद पावक बलना, तिस ठाकुर की रहो मन सरणा। सती अमृत जिन पूजन दियान टहरावन को किए, वसुदा देव बर्तन बलना, तिस ठाकुर के चित्रक चरणा। वेखन कौ नेत्र सुनन कौ तरकरणा, हस्त कमावन बासन रसना। चरण चलन स्यो चरण चलन कौ स्यो सिर कीनो मेरा, मन तिस ठाकुर के पूजू पैरा। अपवित्र पवित्र जन तू करिया, सगल जो न मैं तू सिर तरिया। माब तू सीज पावे नि सीजै, कहार सवरे मन प्रभ त्याई जे। ईहा उहा एकै उही, जत कत देखिए तत तत तोही। तिस सेवत मन आलस करै, जिस विसरै एक निमख न सरै। हम अपराधी निर्गुण आरे, ना किस सेवा ना कर मारै। गुरबोहित वडभागी मिलिया, नानक दास संग पात्र त्रेय। राम कली महला पंजवा, काहू बिहावे रंग स्वरूप, काहू बिहावे माए बाप पूत। काहू बिहावे राज मिलक वपारा, संत बिहावे हर नाम अधारा। रचना साच बनी सबका एक तनी।

संतर चै केवल ना मुरारी काहू बिहावै खेलत जुआ काहू बिहावै अमली हुआ काहू बिहावै पर दर्ब चुराए हर जन बिहावै नाम ते आए काहू बिहावै जोग तप पूजा काहू रोग सोग परमी।

बिहावै सो पिड़ मालता, काहू बिहावै बाल पड़ावत, संत बिहावै हर जस गावत। काहू बिहावै नट नाटक निरतै, काहू बिहावै जी एह हिरतै, काहू बिहावै राज महनरतै, संत बिहावै हर जस किरत करतै, काहू बिहावै पतामुस

दावा अगन रहे हर बूटा मात गर्भ संकट संकटते सूटा जाका नाम सिमरत पौ जाए तैसे संत जना राखे हर राय ऐसे राखन हार दयाल जत कत तेखो तुम प्रतपाल रहाउ जल पीवत ज्यो तिखा मटंत तन बिकसै ग्रह आवत कंत लोभी का तन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यो राखे रखवाला मात पिता दया ज्यो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखे कंठ लाई जो अंदले पेकत हुए आनंद गूंगा भक्त गावे बोशंद पिगल पिगल पर्वत परते पार हर के नाम सगले उदार जो पावक संग सीत को नास ऐसे प्राशत संत संग विनास जो सब उनका पर उजर होता नाम जपत सब परम पोख होता जो चक भी सूरज की आस जो चात्र बूंद की प्यास जो क्रंक नाद करन समान त्यों हरन त्यों हर हर त्यों हर नाम हर जने मने सखान तुमरी कृपा ते लागी प्रीता दयाल पैता आए चीता दया तहारी ते

अनक बार कोट जन ऊपर नानक वंजी वारना। राम कली महला पंजवाष्ट पदी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दर्शन पेट तो पाप सब नासै हर सिंह दे मिलाए, मेरा गुर परमेश्वर सुखदाए पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए। अंते हुई सिखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संतुर मुख लाए। पतत पुनीत किए खिन पीतर अज्ञान अंधेर बंजाई। करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई। बंधन तोड़ चरण कमल ते दृढ़ाए एक शब्द लुलाई। अंधकूप ते बिखे अंधकूप बिखिया ते काढ़यो साच शब्द बने आए। जन्म मरण का सहसा चूका बौड़ नकत हूं ताई। नाम रसायन ए मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसिया जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन न पाई। नाम निदान पाया वड भागी नानक नरक न जाई। प्या काल सियानप उकत न मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सुच है।

सिखो हो सब प्यारे हो, जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारे, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु खेवन माही संतो, हर नाम लहा दास को दिया, सगले तृष्ण उलाही संतो रहाओ, खोजत खोजत लाल इक पाया, हर कीमत कहन न जाई संतो, चरण कमल सो लागो त्याना, साचे दर्स समाई संतो, गुण गावत गावत पै निहला, हर सिमरत त्रिपत अकाई संतो, आत्म राम रविया सब अंतर, कत आवे कत जाई।

बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच करम राम नाम चतारी कुमन केर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पारी उतारी रहाओ अंतर सुखा बाहर सुखा हर जप मलन पए दुष्टारी जिस ते लागे तने निवारे प्रभ जियो अपने कृपा तारी उदरै संत परे हर सरणे पच बिन से महाहंकारी साधु संगत ए फल पाया इक केवल नाम आधारी ना कोई सूर ना कोई हीरा सब प्रगटी जोत तुम्हारी तुम समराथ अकाथ अगोचर रवैया एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करता प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावड़े आईया शब्द उता गावु हरी केरा मन जनी वसा कहे नानक आनंद हुआ सत मैं पाया ए मन मेरे आ तू सतारू हरनालै हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओ करे तेरा कार सब सवारणा सबना गला समत स्वामी सो क्यों मनु विसारे कहे नानक मन मेरे सदारू हरनाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब किश है जिस ते हे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे

सो स्वामी प्रभ रख को अंचल ताकै लाग जियो भज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो एक कोट की जा जियो दिजै आसिक धरनी तरै सतसंग्यार नाम रंगै संसार सागर सब तरै जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो बल जाए नानक पुरख पूरन थिर जा का सुहाग जियो।

कर कृपा अपने घर आवै उन बरसै नीचर तारा उत्तम शब्द सुआ नहारा ऐसे का जाने पे आपे करता आपे दे उगवै सुर असुर संघार है उचो देख शब्द विचार है ऊपर आद अंत ते लोए आपे करे कथे सुने सोए ओ विधाता मन तन दे ओ विधाता मन मुख सोए प्रभ जग जीवन हो अवर न कोई नानक नाम रते पत होई।

बंधन काट मुक्त कर्याण है। छाया शुशी जगत बुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना शिजा जो बन जरूआ सिर काल का शिजा पही सिबाल जप आप प्रपत लोई जुग जुग तावर न कोई ज्यो पावत राखो राख राखो जस जात क्यों देवे पत साखो जागत जाग रहा तुद भावा जा तू मिले तो तुद समावा जय जय कार्य पू जगदीश गुरमत मिली अभी सकीस

सोई तस्मिन् राजा वर न कोई। राड़ा गारुड़ तुम सुनो हर वसै मन माए गुरप्रसादि हर भाई है मतगु भरम भुलाए सो सौ साचा जिस हर तनरास गुरमुख पूरा तिस आभास रूढ़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुकटिया हर वर पाया नार सुन रूपा संचिया धन काचा बिक्षार साहो सदाए संच धन दुबदाय कुवार सचियारा सच संचिया सच व नाम अमोल हर निर्मायल उजलो पथ सची सच बोलो सजमी सुजान तू तू सरवर तू हंसो सच ठाकुर मन वसै हुम बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीता सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सजान खिमा विहूणे खप गए कूहण लख संख गणतना वै क्यों गणी खप खमू बेसंख

चार गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खेहे, गावे को जी लै फिर देहे, गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राहू, नानक विकसै वे प्रवाहु, साचा साहिब साच नाहे, भाख्या पाउ अपार, आखह मंगह देह देह, दात करे दातारू, पेर के अगै रखी है जिद सै दरबारू, मोहों के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाऊ वड्याई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानके वै जानिए सब आपे सचियार, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेवे आतन पाया मानू, नानक गाविए गुणी निधान, गाविए सुनिए मन रखिए पाऊ, दुख पर हर सो घर लै जाए, गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहिया समाई, गोरीशर गुर गुरख वर्मा गुर पार्वती माई, जे हऊँ जाना अखां नाहीं कहना कथन ना जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, तीर्थ नावां जेत सभावां विण भाणे के नाए करी।

अचंत ब्रह्म गणिका निर्मल मंत ब्रह्म के जिस कर प्रया ब्रह्म गणिका बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी भाई ब्रह्म गणी को बल बल जाए ब्रह्म गणी को खोजा महेश्वर नानक ब्रह्म गणी आप परमेश्वर ब्रह्म गणी के कीमत नाय ब्रह्म गणी के सकल मन माए ब्रह्म गणी का कौन जाने फिर ब्रह्म गणी को सदा देश ब्रह्म गणी का कथन जय जा खरे ब्रह्म गणी सर्व का ठाकुर ब्रह्म गणी कीमित कौन बखाने ब्रह्म गणी की गत ब्रह्म गणी जान ब्रह्म गणी का अंत न पार नानक ब्रह्म गणी को सदा नमस्कार ब्रह्म गणी साफ सुष्का करता ब्रह्म गणी साफ जीवे नहीं मरता ब्रह्म गणी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म गणी पूर्ण पूर्व दाता ब्रह्म गणी अनाथ का नाथ ब्रह्म गणी का सौ प्रहात ब्रह्म

जो तिस पावा सो ही फन थियो, कबू ऊंच नीच में बसा, कबू सोग हर खरंग हसा, कबू निंद चिंद व्यवहार, कबू उप आकाश पयाल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावनहार, कबू नृत्य कर पांत, कबू सोए रहा दिन रात, कबू महाक्रोध विकराल, कबू सर्व की हो त्रवाल, कबू होए बह बड़ राजा, कबू पिखारी नीच का साजा, कबू आप कीर्तमय आवे, कबू पला पला कहावे।

तरती तिश्नान कबू से सदक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पंग हो जिया अनक जोन भरमै प्रमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावा जो प्रभ पावै तिव नचावै जो तिस पावै सोई होए नानक दूजा वर न कोय कबू साध संग ते पावै उस स्थान ते बोर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नामृत एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कर संग ज्यों जल मैं जला खटाना त्यों ज्योति संजो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कह सतकुरबान सलोक सुखी बसा मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतर राजमान सो नरक पाती हो स्वान जो जाना मैं जो ब्रह्मंत सो हो बिष्टा का जंत आपस कौ करमंत कहवै जन्म रह बजोन प्रमहवै तहन भूम का जो करा गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आगै सोख पावै धनवंत होय कर गुरबावै तृण समान का संग न जावै बहु लश्कर मानक उपर करे आस पर भीतर ताका होय विनाश सबते आप जन बलवंत खिनमै होय जाए भासमंत किस न बधै आप अहंकारी धर्म राय तिस्करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगाह प्रवान कोट कर्म करै हो तारे श्रम पावै सगले ब्रथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन करे आत्म निंद्रवै हर दरगाह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेन जा का मन होए को नानक ताकि निर्मल सोए जाब लग जाना मुझते काश होए तब इसको सुख नाई कोय जाबे जाना मैं किस करता तब लग घर जोन मैं फिरता जब तारा को बैरी मी तब लग निचल नाही चीत जब लग मोह मगर समाए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस खट्टे लाख उठता वै तृप्त नाया वै माया पाछै पावै अनक भोग बिख्या के करै न तृप्ता वै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजा सुपन मनोरथ पृथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण क्रावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण क्रावण करण हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृढ़ करे तैसा होए आपे आप आप प्रभु सोए जो कुछ कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूजा देखे करा विवेक आपे एक आपे अनेक मर न बिनस आवै न जाए नानक सदी रह समाए आप उदेश समझाए आप आपे रचा सब कै साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कुछ उसका वो करना हार उसते पहन कहो कुछ।

प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किन बखियानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किन बिरला चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण खियानी पवित्र पवित्र पवित्र पनीता नाम जपै नानक मान प्रीत सलोकम संत शरण जो जन परा सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बोर बोर अवतार अष्टपदी संत का दुख हार जा कटा संत का दुखन जमते नहीं छुटा संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरक में पाए संत का दुखन मत होए मलीन संत का दुखन सुपाते हीन संत के हते को रखना कोई संत का दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे कर नानक संत संग निंदक पीतर संत के दुखन ते मुख पवै संतन का दुखन काग ज्यों लवै संतन का दुखन सर्व ज्यों पाए संत का दुखन त्रिग ज्यों क्रमाए संतन का दुखन तृष्णा में जला संत का दुखन सब को छलै संत का दुखन ते सब जाए संत का दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाओ को नाय संत पावै ता नानक संत पावै ता ओए पीगत पाए संत का निंद कमाताई संत का निंद खिण टिकना पाई संत का निंद कमा त्यारा संत का निंद परमेश्वर मारा संत का निंद राज देहीन संत का निंद दुखियार दीन संत के निंद को सर्व रोग संत के निंद को सदा विजोग संत की निंदा दुख में दुख नानक संत पावै ता उसका पी हो मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागा संत के दुखी को सब त्यागा संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरा संत की दुख न सुख ते टर संत के दुखी को नाय ठाव नानक संत पावै तले मिलाए संत का दुखी अद बीज ते टूटा संत का दुखी कित काज न पहुंचा संत के दुखी का उद्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ किस ना आए अपन बीज आपे खाए संत के दुखी को न रखन हार नानक संत पावै त लय वार संत का दुखी ओ बिललाए जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यो पावक इंद नहीं त्रपै संत का दुखी छुटा केला ज्यो बुआड़ तरखेत माए दोहेला संत का दुखी धर्म तेरा संत का दुखी सदमिथ्या कैत किरत निंद का तुरही पया नानक जोत भावै सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगाह मिला सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी नाम रना जीवाई है संत के दुखी की पूजा नासा संत का दुखी उठ चला निराशा संत का दुख न तृष्ठा कोई जैसा भाव है तैसा कोई होए पया कीर्तना मेठा कोई नानक जाना सच्चा सोए सब कर तिसके ओ करना हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उसत करो दिन रात तिसे त्याहो सास ग्रास सब कछ वरता तिसका किया जैसा करे तैसा कोथिया अपना खेल आप करना हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा कर तिस अपन नाम दे बट पागी नानक जन से सलोक तजो स्यान सुरजनो सिमरो हर हराय एक आसर मन रखो नानक दुख परम पौ जाय अष्टपदी मानु की टेक प्रति

कुंभू सुख होए तिसका नाम रख कंठ प्रोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन लागै कोय। उस मन में करन कार कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कलह जियो। नैनो पेख ठाकुर करंग साध संग पिनसै सब संग, तरण तलो मार गोबिंद मिटै पाप जपिया हर बिंद। कर हर करम श्रवण हर कथा, हर दरगा नानक उजल मथा। बटपाकी ते जन जगमाए सदा सदा हर के गुण गाए, राम नाम जो करें विचार से धर्मवंत कणी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी, एक को एक एक पछाने एत उत्कियो सो जी जाने। नाम संग जिसका मन माने आ नानक तिने निरंजन जाने आ। गुरु प्रसाद आपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जिस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत। अन दिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मैं सोई निर्माण। एक ऊपर जचन की आसा जिसकी कटिया जाम की फासा, पार्वम की जिस मन भूख नानक किस न लागे दुख। जिसका हर प्रभ मन चितावै सो संत सोहिला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करा सो सेव को किसते डरा। जैसा सा तैसा दृढ़ाया अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत् सब बूझिया। जब देखो तब सब कशमूल नानक सो सुखम सोई स्थूल। न किस जन्म न किस मरै आपन चलत आप ही करै, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मैं आप अनक जुगत रच थाप उथाप, अविनाशी नाही किस कांड धरन धर ब्रह्मांड। अलख पहे पुरख प्रताप आप जपाए तनानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरतन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदारण प्रभ के सेवक दुख सारण, आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जपै निहाल। उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करै बड़ भागै, नाम जप पावै विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किछ करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसा हर संग, सह सवाय होवा सो होय करणा हर पछाणा सोय। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माए समाए उस सोख नदान उन्हों।

ਸਿਮਨ ਉਦਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ ਅਸ਼ਪਦੀ ਟੂਟੀ ਕਾਂਢਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀ ਆਪੇ ਪਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸਮਨ ਮਾਏ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਤਾ ਕੋਈ ਨਾਏ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੁ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੌ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਵੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬ ਹੈ ਆਤ ਸੁਰਾਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਤਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਤਾਰ ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਰ ਜਾਣਾ ਗਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੈ ਹਉ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾ ਰੋਗ ਜਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਮੈ ਥਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਸਥਮਨ ਜਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਵ ਚੜਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ ਜਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਜੋ ਮਾਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਰਲਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੇ ਚਿਤਾਰ ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰਿਆ ਜਾਨ ਕੌਣ ਬਸ ਸਾਹੀ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਲਾਪਟ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਏ ਨਾਨਕ ਪਸ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਜ ਮਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮੋਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਰ ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾ ਸੰਗਚਾਲ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੋਏ ਇਹ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਸਦ ਬਲਹਾਰੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ ਹਰਬ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਜਾਈਆ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸਵਾਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਕੈ ਓਟ ਗਈ ਸੰਤੈ ਦਰਿਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਜੀਵਾ ਲਨਹਾਰ ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤੇ ਆਧਾਰ ਸਰਮਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਏ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ ਪਾਏ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋਗ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਰਮਲੇ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੁਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭਚੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤੋ ਲੋਇ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕੈ ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੱਚਾ ਆਕਾਰ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸੱਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨੇ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ਤਿਸੈ ਬਜਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿਰਾਖ ਮਾਨਕ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ ਤਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿ ਨਾਹੀਂ ਕਿਛ ਕੋਏ ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਣੀ ਭਾਉ ਨਾਨਕ ਮਨ ਇਹ ਨਰਾਓ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਾਂ ਜੋਗ ਜੋ ਕਿਰਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗਾ ਹਰਨ ਪਰਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਭੋਰ ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਅੰਧ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਕੈ ਸਰਬ ਥੂਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰ ਤਾਕੈ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਬ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਗ੍ਰਹਿਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਤਹਿ ਤਹਿ ਭਗਤਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮੇਤ ਨਾ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਵਗਾਏ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭੂਤ ਸਗਲ ਪ੍ਰੋਈ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਸਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿੰਦੇ ਜੰਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇ ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਭੇਕ ਕਰੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਬਿਸਕਿਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੇ ਖਿਰਮਾਏ ਪੂਰ ਰਹੋ ਪੁਣ ਸਭ ਠਾਏ ਨਾਨਾ ਬਿਤਕਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੇ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਕਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜਾਂਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਕਾਸ ਪਾਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੁਣ ਸ੍ਰਵਣ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋਜਨ ਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸੱਤ ਜਾ ਕਾ ਸੱਤ ਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸੱਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤੂਤ ਸੱਤ ਸੱਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੱਤ ਪੁਰਖ ਸਮਾਏ ਸਮਾਣੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਰ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
सत करणी निर्मल निर्मली से बुझाए तिसै सब पली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत वचन साधु उपदेश सत जन जा कर हृदय प्रवेश सत नित बूझा जे कोय नाम जपता की गात होय आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गात जिसकी श्रेष्ठ जो सो करण है हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाना किया नानक जो तिस भावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बूझा तिस आया स्वाद प्रभु कै रंग राज जन रहे गुर कै वचन पदार्थ ले ओए दाते दुख काटनहार जा कर संगत रह संसार जन का सेवक सोवण पागी जन का संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावा गुर प्रसाद नानक फल पावा है सलोक आदि सच जुगाद सच है पहे सच नानक होसी पहे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सवधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब होय नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण कारण तनमूल पछान्या जा कर हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पैते निरभो होय बसाना जिसते उपजा तस्मय समाना बस्त माले बस्त गड़ाई ताको पिन्ना कहना जाई पूजा बूजन हर विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक का मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाना संग प्रभु का सेवक नाम का रंग सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु तारा नानक सो सेवक सा सास मार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेव की सर पर रख अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेव को नाम जपाई अपने सेव की आपद रख ताकि गतमित कोई न लाक प्रभु के सेव को न पहुंचा प्रभु के सेव को ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैत इस प्रगटाया नीकी कीरी में काल रख भस्म कर लश्कर कोट लाख जिसका साहस न काटते आप ताको राख देकर हाथ मानस जतन कर्तव्य पांत इसके कर्तव्य थे जात मारा न राखा अवर न कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करें रे प्राणी जप नानक रख प्राणी बारं बार बार प्रभ जपिया पी अमृत इमान तंत्र पिया नाम रतन जिन गुरुमुख पाया तिस कुछ अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रहजु जन त्रिपताने मंत्र नाम है नाम समाने उठ बैठ सोत नाम को नानक जन कर सदकाम बोलो जासे वादन रात प्रभु अपने जन की नींदात करें भगत आत्म का चाय प्रभु अपने सराय समाये जो हुआ हो सो जाना प्रभु अपने का हुक्म पछान तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण का एक न जानो आठ पैप बसे अजूरे को नानक सही जन पूरे मन मेरे तिनकी ओटले मन तन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पिछाता सो जन सर्व सुखा दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श सब पाप मिटावे अवर स्याण सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो साध पैरा श्लोक सतपुरख जिन जाने सतगुर तिसका नाम तिसका संग सिख उदर नानक हर गुणगा अष्टपदी सतगुरु से की करा प्रतपाल सेव को गुरु सदा दयाल सिख की गुर दुर मत मलहर गुरु बचनी हर नाम उचर सतगुरु से के बंधन काट गुर का सिख बकार ते हट सतगुरु से को नाम तन दे गुर का सिख वाट भागी है सतगुरु से का हल्त पल सवार नानक सतगुरु से को जी नाल समार गुर का गृह सेवक जो रह गुरु की आज्ञा मन में सह आपस को कर काश ना जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचा सतगुरु के पास ते सेव के काज रास सेवा करत होए ने कामी तिसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेव गुरु की मतले बीस विश्व गुरु का मन माना सो सेव परमेश्वर की गत जाना सो सतगुरु जिस हृदय हर नाम अनक बार गुरु को बल जाऊं सर्वजान जी का दाता आठ पैर पार रंग राता
ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ परम, सह स्यान पलया न जाई है, नानक ऐसा गुर बुढ़भागी पाई है, सबल दर्शन पेख पुनीत, परस चरण गत निर्मरीत, पेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे, सुनकर बचन करने आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखे जाका मंत्र, अमर दृष्ट पेखा हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तसले मिलाए, जेबा एक उस अनेक सत पूर्ण विवेक, काहू बोल न पोच प्राणी, अगम उचर परम निर्वाणी, निराहा निर्वैर सोदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अनक भगत बंधन नेत कराए, चरण कमल हृदय सिमरै, सद बलहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने, ए हरस पावा जन को अमृत पीवे अमृत सोए, उस पुरखा नाही कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुणतास, आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेव कौ दे, वो माया का संग न ले, मन में रख हर हर एक, अंधकार दीप पुरगा से, नानक परम मोह दुख तैते नासे, तात्मा ठांड वरताई, अनपया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पौ चूका निरपौ हो बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे, जिसका सा तिन कृपा तारी, सात संग जब ना मुरारी, थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवण, निर्गुण आ सरगुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमते आपे पाए, हर बिन दूजा नाई को, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रवै रूप रंग, पै प्रगा साध कर संग, राच रचना अपनी कर तारी, अनक बार नानक बलहारी, सलोक साथ ना चाल बिन भजन, बिख्या सगली छार, हर हर नाम कुमावना, नानक ए धन सार, अष्टपति संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत बसारो, चरण कमल हृदय में उर धारो, करण कान सो प्रभ सम्राथ, दृढ़ कर गो नाम हर वत, ए धन संचो हो भगवंत, संत जना कर निर्मल मंत, एक आस राखो मन माए, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस धन को चार कुंट उठता वै, सो तन हर सेवा ते पावे, जिस सुख को नित बाछे मीत, सुख सुख साधु संग प्रीत, जिस सुभा को करे भली करनी, सा सुभा भज हर की चरणी, अनको पावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औक्स लाए, सर्व निदान में हर नाम निदान, जब नानक दरगह प्रवान, मन प्रोद हर कह नाय, दह दिस्तावत आवा ठाए, तको बिघन लगा कोई, जा कर जा बसार सोए, कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुपाओ, पहो बिनसा पूर्ण हो आस, भगत पाए आत्म प्रगास, तित कर जाए बसा अविनाशी, कौ नानक काटी जम फांसी, तत् विचार कह जन साचा, जन्म मरा सो काचो काचा, आवागमन मिटे प्राप सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, यों रतन जन्म काहे उदार, हर हर सिम पाणे धार, अनको पावना छूटन हारे, सिमर सात वेद विचारे, हर की पग करो मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए, संग न चाल स्थिर तना, तू क्या लुपटावे मूर्ख मना, सोत मीत कुटुंब अनबनता, इनते कहो तुम कमर सनाथा, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कमर छुटकार, अस हस्ती रथ सवारी, झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझै न बगाना, नाम बसार नानक पछताना, गुर की मातू ले आने, भगत बिना बोडू बे सियाने, हर की पग करो मनमीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माए, जन्म जन्म के किल जाए, आप जपो अवरा नाम जपाओ, सुनत कैत रहत गात पाओ, सार भूत सत हर को नाम, सह सुभाए नान गुण गाओ, गुण गाव तेरी उतर समैल, बिनस जाए हो मैं बिखैल, हो हे अचिंत बसै सुख नाल, सास करा सर नाम समाल, चाड़ सियाण सगली मना, सात संग पावै साच तना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगाह जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख, एको जाप एको सलाह, एक सिमर एको मनियाय, एक के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हरे आप, पूर्ण पूरे प्रव्याप, अंक विस्तार एक ते पये, एक रात प्राश गए, मन तन अंतर एक प्रवराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक, फिरत फिरत प्रभ आया, पर्या तो शरणाय, नानक की प्रभ बेनती,
अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाच जन जाचा प्रवधान कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर पार ब्रह्मरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम ते आवो। चरण कमल सो लागा प्रीत भक्त करो प्रभु की नेत नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगा नाम प्रभु सार। प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्तन ने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपार परे प्रेम रस रंग उपजा चाहो साध का संग। परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अनदिन लेव लाग। बड़पागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए। सेव की मनशा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु हो दयाल सेव कीनो सदा निहाल। बंदर काट मुद जन पया जन मरण दुख प्रम गया। इच कुनी श्रद्धा सब पूरी रव रहया सत्संग हजूरी। जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरा जे काल न पन सो क्यों बिसरा जे किया जान। सो क्यों बिसरा जिन सख्स दिया सो क्यों बिसरा जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरा जे गुरु मराख गुरु प्रसाद को बिरला लाख। सो क्यों बिसरा जे बिखते कांड जन्म जन्म का टूटा गांड। गुर पूरा तते हा बजाया प्रभु अपना नानक जन त्याया। सा जिन संत करो ए काम आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरा नाम जपावो। भगत पाए तरिया संसार बिन भक्ति तन होसी चार। सर्व कल्याण सुख निध नाम बूट जात पाए विश्राम। सकल दुख आहो तनास नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाहो मंत्र अंतर ही सुहाओ। नेत्रोपेख दर्श सुख होए मन बिकसा सा चरण तोए। भगत ना कह मन तन रंग बिरला को पावे संग। एक बस्ती जय करमया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए। प्रभु बख्शन दीन दयाल भक्त वत्सल सदा कृपाल। नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर प्रतपाल। आदि पुरुष कारण करतार भक्त जना के प्राण आधार। जो जो जपा सोहे पनीत भक्त पाए लावे मन हीत। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मान पाई। बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत। पली सुकरणी शोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत।

अष्टपदी जब आकार एक आश्रम दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हर्क सो किस व्यापत जब अपन आप आप पार ब्रह्म तब वो कहा के सोबत परम अपन खेल आवर्ती जा नान करण हर न दूजा जब हो प्रभ केवल तनी तब बंध मुत को किसको गनी जब एक हरे गुम पार तब नरक सुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव शक्त को केत ठाए जब आप अपनी जो तर तब कवो निडर कवन कत डर अपन चलत आप करना हर नानक ठाकुर एगम पार अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो के सोए जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछ लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन मान दे अपने आप आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पात होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कौ मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल शिद्र लत को कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावा तय किसे भूख कवन तृप्तावै करण क्रावण करण हार नान करते कनाई शुमार जब अपनी सो बाप संग बनाई तब कम माए बाप मित्र सोत पाई जब सर्व कलाया पे प्रवीण तब बेखते कहां को चीन जब अपने आप आप और तारा तो शगन अब शगन कहां विचार जय अपन ऊच अपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा विस्मन विस्मरे विस्माद नानक अपनी का जानो आप जय अछल अछेद अभेस माया वहां किसे व्याप्त माया आपको आपे आदेश त्यो गुण का ना ही प्रवेश जय एक एक एक भगवंता तय कौन असिंत कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपन आप आपति हारा तय कौन कथा कौन सुन हारा भव बेअंत ऊंचे ऊंचा नानक आपको आपे पहुंचा जय आप प्रचय प्रपंच कार त्यो गुण में किनो विस्तार पाप पुन तपही कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत हार जाल माया जंजाल होम मोह परम पह पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओख्यान अपन खेल आप कर देख खेल संकोचा तो नानक एक जय अवगत भगत आप जय पसर पसार सुन प्रताप तू पाका आपे तनी उनकी सुबह बनी आपे कौत कर अनंत जोज आपे रसपोग निर्जोग जिस पावे तिसे अपन ना लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेशुमार अथा अगंत अतोला ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानक एको पसरिया दूजा कहे दृष्टार अष्टपदी आप कथा आप सुन हार आप एक आप विस्तार जंत इस पावे तिट पाए अपने पहना लय सुमाए तुम ते पिन नहीं किशोय आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जो आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगर सिटका जेता।

की जुगत जाकर सभात अंतरबार जानो साथ कुंडदान बेअंत उपार नानक दास सदा बलहार पूर्ण पूरा दयाल सब उपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जान आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाला जीवन बपात जो जो रचो सोते सहते आत जिस पावै तसले मिलाए भगत करे हर के गुण गाए माने अंतर विश्वास कर माने आ करण हर नानक एक जाने आ जन लगा हर एक नाय तिसकी आसना बिरथी जाए सेवक को सेवा बने आई हुकुम बूझ परम पद पाई इस ते उपर नहीं विचार जाका मन बसया अहंकार बंधन तोर पए निर्वैर अंधन पूजा गुर के पैर ए लोक सुखिए परलोक सोहेले नानक हर प्रभु आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभु परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का है सुहाओ आठ पैर पेखो नेरा मिटा ज्ञान बिनसा अंधेरा सुने उपदेश सिरदा वसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ हलत पलत दोलियो सवार राम नाम अंत उर तार पूरे गुर की पूरी देखिया जिस मन बसा ते साच परीखिया मंत्र नाम च बोले बुलाए दुख दर्द मन ते पहुंचाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह ने वह खेव तुम्हारी एक काटे रखो मन माए नानक भोर न आवे जाए तिस ते दूर कहां को जाए उबरा राखण हार त्याए निर्भौ जपै सगल भौ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभु राखै तिसनाहीं दुख नाम जपत मन होत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई ना पहुंचन हार सिर उपर ठांडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमर जाकी दृष्ट दर्शन पेख उदत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसा सोत निहाल तक निकट न आपतकाल अमर भय अमरा पद पाया सा संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगाश अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक कटमाय अनक रंग नाना दृष्टाय नौ निध अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत नाथ कहना जाय चर्च समाद तिन देखा जिस आप दिखाय नानक तेजन सोजी पाए सो अंतर सो बारे अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरण माय आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म कौन पानी बसंतर माय चार कुंट दध से समाय तिस्ते पे नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ बे प्राण सिमृत मैं देख ससियर सूर निखेत्र मैं एक बाणी प्रभु की सबको बोला आप डोलना कब हूं डोला सर्व कला कर खेला खेल मोल न पाया गुण मोल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत तारे स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नाश नानक तन्मय विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस की ये रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माना कर्ण क्रावन हार प्रभु जाने अंतर बसे मार पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सात किया सब सात तिस प्रभु ते सगली उत्पात तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एक ओंकार अन कला लखी न जाय जिस भावै तसले मिलाए कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप भरपूर अंतर का जिस आप जनाए नानक तिस जने आप बुझाए सर्व भूत आवरतारा सर्व नैन आपे खनहारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आपन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सब कह मद अलिप्त रहै जो कुछ कहना सो आपे कहै आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा भावै तलै समाए इस ते होए सुनाही बुरा पूरा कहो किने कश करा आप भला करतूत अतनी की आपे जान अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत पोत अपन संग्राच ताकि गतमित कही न जाए दूसर होए ता सोजी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नान के जान जो जान ते सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए
को धनवंत कुलवंत पातवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन का यह सुहाओ जन का संग चेता वह नाओ आ मुक्त

पंच जना सो संगना छुट क्यों अधिक अहं बुद्ध बदे पाठ पढ़ो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सते पंच जना सो संगना छुट क्यों अधिक अहं

जोग सिद्ध आसन 84 एपी कर कर रहया वड्डी आर जा फिर जन्म हर स्यों संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन चुआ नरक घोर का।

हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै करमा को नानक तिस भयो परापत। जिस पूर्व लिखे

0: राष्ट्रपति
1: जब कार्य कसना दिस्ते
0: पापन तब कहते होता
1: जब कारी अपन सुन समाद
0: तब वैर विरोध के संग कमात
1: जब इसका वरण चहन न जापत
0: तब हर सो को किसे व्यापत
1: जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ के सोवत परम अपन खेल आवर्ती जा
0: नाने करने हार न दूजा
1: जब होत प्रभु केवल तनी
0: तब बंध मुक्त को किसको गनी
1: जब एक क्या हर अगम पार
0: तब नरक सुर को कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्रभु सहस भाए
0: तब शिव सकत को के तठाए
1: जब आपे आप अपनी जोत
0: तब कवन ने डर कवन कत डरे
1: आपन चल ताप करने हार
0: नानक ठाकुर गम पार
1: अब नासी सुख अपन आसन
0: तब जन्म मरण को कहा विनाशन
1: जब पूरण करता प्रभु सोए
0: तब जम की त्रास कहो किस होए
1: जब अभिगत गोचर
0: तब चितर गुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाश निरंजन गोचर
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
1: अपन आप ही चर
0: जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा
1: जय निर्मल पुरुष पुरुष होता
0: तय बिन मैल कहो क्या तोता
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
0: तय कौन को मान कौन अभिमान
1: जय स्वरूप केवल जगदीश
0: तय सल सिद्धर लगत को कीस
1: जय जो स्वरूपी जो संग समावे
0: तय किसे पू कवन तृप्तावे
1: कर्ण करावन करने हार
0: नानक करते करना है समार
1: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
0: तब कवन माई बाप मित्र सुत पाई
1: जय सर्व कला पे पर भी
0: तय वेद के देव कहा कुचीन
1: जय अपन आप आप उतार
0: तो सगन अप सगन कहा विचार
1: जय अपन उच अपन आप मेरा
0: तय कौन ठाकुर कौन कहिए तेरा
1: विस्मन विषम रहे विस्मार
0: नानक अपनी गत जानो आप
1: जय अचल अचेर पे समाया
0: उहा किसे व्यापत माया।

कहूं रूप तारे महाराज सोहंग, कहूं देव कन्यान के मान मोहंग। भुजंग प्रयात छंद श्री मुखवाग पातशाही दसवीं। सिरंग सेत शतरंग सो सुबंग विराजंग, लखे शेल छाया करे तेज लाजंग। विशाल लाल नैनंग तिर बंके लोयन धंतरी साला। विशाल लाल नैनंग महाराज सोहंग, तिगं आसवालंग हसंग कोट क्रोहंग। कहूं रूप तारे।

हर हर रूप सब जोत सवाए, हर निकट बसे हर बोले, हर हर रूप सब जोत सवाई, हर हर रूप सब जोत सवाई,

नरसेनार होए अवतरे शिव शिव करते जो नर ध्यावे बर्द चने डौरू टमकावे भजे देव कोई और महामाई की पूजा करे नरसेनार होए अवतरे तू कैयत ही आद पवानी मुक्त की बरिया